अरमान भले दिल के लगन तेरे लिए है फ्रॉम मूवी जान पहचान, पिक्चराइज रोमांटिक सॉन्ग एंड ड्रीम सीक्वेंस एंड राज कपूर एंड नरगिस. द नेक्स्ट सेवरल सॉन्ग्स आर फ्रॉम मूवी अलबेला 1951. दिस मूवी हैड ए कैस्ट ऑफ भगवान दादा एज इज कॉल्ड. ही वॉज ऑल्सो राइटर एज वेल डायरेक्टर द मूवी एंड गीता बाली बींग वाइफ ऑफ शमी कपूर, सपोर्टेड बाय प्रतिमा देवी, बिमला कुमारी, सुंदर सिंह, बद्री प्रसाद, दुलारी एंड अ फ्यू अदर्स. कंपोजर ऑफ दिस मूवी सी रामचंद्रा, चितल रामकर रामचंद्रा एंड राजेंद्र कृष्ण रोड द लिरिक्स. रोमांटिक कॉमेडी म्यूजिकल फिल्म. चितलकर वॉज नॉट ओनली रेनाउंड म्यूजिक डायरेक्टर बट ऑल्सो एकम्प्लिश्ड सिंगर रादर. ही हैड सिक्स ड्यूएट्स एंड टू सोलोज और 12 सॉन्ग्स इन दिस मूवी. सॉन्ग द साउंड ट्रैक ऑफ दिस मूवी वॉज अक्लेम्ड एज क्लासिक. फीचर सेवरल वेस्टर्नाइज सॉन्ग्स सच एज शोला जो भड़के, दिल मेरा धड़के, ये दीवाना परवाना, शमा लेके आया ये नजराना. एम्प्लॉयड कैबरे टाइप डांस कोरसेस फीचरिंग बांगो ड्रम्स, ओबेज, क्लैरिनेट्स, ट्रम्पेट, सैक्सोफोन्स एटसेट्रा एंड यू नो ग्रेट. सो द फर्स्ट टू सॉन्ग्स आई वांट टू प्ले फॉर यू. धीरे से आ जा रे अखियन में लोरी काइंड ऑफ सॉन्ग. द फर्स्ट वन इज लता मंगेशकर solo and second one is Chitalkar and Lata Mangeshkar duet. The Lata Mangeshkar solo is a picture of Bhagwan's sister trying to put him to sleep and he was having trouble falling asleep. And second one is in two parts. First happy part is picture of Bhagwan and Gita Bali as he tries to get her to sleep while he's driving a car. And second, the serious half is picture of his sister and father as they've been reduced to begging. So enjoy the two songs.

0: करता हूँ बढ़ के अज बढ़ के,
1: मैं कर सकती हूँ तुमसे भी बढ़ चढ़ के, बढ़ चढ़ के,
0: जो तुम करो मैं कर सकता हूँ बढ़ के अज बढ़ के,
1: मैं कर सकती हूँ तुमसे भी बढ़ चढ़ के, बढ़ चढ़ के, मैं ऊँचे सुरों में गाऊँ,
0: मैं तुमसे भी ऊँचा जाऊँ,
1: मैं ऊँचे सुरों में गाऊँ,
0: अज मैं तुमसे भी ऊँचा जाऊँ। सारेगा

0: करके,
1: मैं कर सकता हूँ तुमसे भी बढ़ चढ़ के, बढ़ चढ़ के
0: जो तुम करो मैं कर सकती हूँ बनके,
1: मैं कर सकता हूँ तुमसे भी बढ़ चढ़ के मैं झटपट झटापट बोलूँ,
0: मैं फटफट फटाफट बोलूँ,
1: मैं झटपट झटापट बोलूँ,
0: मैं फटफट फटाफट बोलूँ,
1: झटपट झटपट
0: फटफट फटफट
1: झटपट झटपट
0: फटफट फटफट
1: झटपट झटपट
0: फटफट फटफट
1: झटपट झटपट
0: फटफट फटफट।

शुक्रिया है प्यार तेरा, शुक्रिया. द नेक्स्ट सॉन्ग कम्स फ्रॉम मूवी बादल, 1951 मूवी, एंड हियर अगेन द लीड एक्टर वॉज प्रेमनाथ मल्होत्रा. हिज नेम इज बादल एंड हेंस द नेम ऑफ द मूवी. अपोजिट मधुबाला. दिस मूवी इज एक्चुअली एन इंडियनाइज्ड वर्शन ऑफ रॉबिन हुड ऑफ द शरवुड फॉरेस्ट लेजेंड. The king is away, the jagirdar is a wimp, and his henchmen loot the poor. Our hero Premnath steals from the tyrants and helps the poor and oppressed. On romantic sideline, he courts the jagirdar's beautiful daughter Madhubala, who is also being wooed by the evil henchman. The film has several popular songs. Did pretty good at box office. The song on the play for you. मैं राह भटकने वाला हूँ, कोई क्या जाने मत वाला हूँ. अ पिक्चर इन प्रेमनाथ एंड मधुबाला. आई हैव इंक्लूडेड अ बिट ऑफ द डायलॉग बिफोर द सॉन्ग टू गिव यू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सॉन्ग. शी आस्क्ड हिम अबाउट हिज नेम एंड हु ही इज, एंड द सॉन्ग इज रिस्पॉन्स टू दैट क्वेश्चन. ड्यूरिंग द सॉन्ग शी इज राइडिंग ऑन अ हॉर्स एंड प्रेमनाथ इज वॉकिंग ऑन द साइड विथ रेन्स ऑफ द हॉर्स. मैं राह भटकने वाला हूँ. हियर द सॉन्ग.

0: तुम्हारा नाम क्या है?
1: मेरा नाम है बागा।
0: अच्छा बागा सर, अच्छा। अब तुम घोड़े पर बैठ जाओ, मैं पैदल चलूंगी।
1: ये कैसे हो सकता है?
0: तो तुम भी इसी पर बैठ जाओ।
1: मैं भी इसी बैठ जाऊं?
0: हाँ। क्यों, तुम्हें कोई इतराज?
1: मुझे तो कोई इतराज नहीं, शायद इस घोड़े को इतराज।
0: बड़े बहुत अच्छा बागा, ये तो बताओ तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो?
1: मैं कौन हूँ?

तुम झगड़ना गांवों की छोरियो, देखो भागो यहाँ से कालियो गोरियो। फिर ना कहना हमरा सरदार, फिर ना कहना हमरा सरदार, बिगड़ता क्यों है।